स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से कहां कहां, कोथाय कोथाय, किथे किथे, कहां कहां कहां कहां कहां कहां कहां।

0: बोल मुन्ने तुझको क्या अच्छा लगता है।
1: लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप लाली पप।

0: गद्या गद्या मोरे मुख गोप गद्या देती सर्वदम
1: थम थम थम थम थम थम
0: अरे छड़ी लगे थम थम भिजाई।

घर में समा गई तो दिल पाना लूंगा, गले लग जा ओ मेरी चल परी मयू शर्मा, ओ मेरी जा ए किट्टी, ए मेरी जाने चमन दिल रुबा शोला बदन, तू नजर में समा गई तो दिल पाना लूंगा, गले लग जा ओ मेरी चल परी मयू शर्मा।

चमन दिल रुबा शोला बदन, तू नजर में समा गई तो दिल बना लूंगा, गले लग जा मेरी।

लो पसीना पोछ लो। आंखों में शरारत है, होठों पे शिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है, कुछ

है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।